na Tripurani tanu, vidita sakala sansar. Kaushik, suno, vanda ihman, kutila kala vasa nijakula ghala, tuma hata kahu jo chaha ubara, kahita taap bala rosho hamara. Sura samad karani karahi, kahina janava hi aap, nityaman rana payani, kayan karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डर ही न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के उघरे पटल पर